सर र केहर सिंहको आवाजमा सुन्नुभयो भर्खरै। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले तोकेको खुल्ला बजार वैदेशिक विनिमयतर्फ लागो। यूएस डलर एकको खरिदर 152.37 रुपियाँ, बिक्री दर 152.97 रुपियाँ। युरो एकको खरिदर 177.74 रुपियाँ, बिक्री दर 178.44 रुपियाँ। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर 207.60 रुपियाँ, बिक्री दर 208.41 रुपियाँ। स्विस फ्रैंक एक को खरीदर 189.53 रुपियाँ, बिक्री दर 190.27 रुपियाँ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक को खरीदर 109.42 रुपियाँ, बिक्री दर 109.85 रुपियाँ। कैनेडियन डॉलर एक को खरीदर 109.88 रुपियाँ, बिक्री दर 110.32 रुपियाँ। सिंगापुर डॉलर एक को खरीदर 119.98 रुपियाँ, बिक्री दर 120.45 रुपियाँ। जापानीज येन 10 को खरीदर 9.58 रुपियाँ, बिक्री दर 9.62 रुपियाँ। चाइनीज युआन एक को खरीदर 22.67 रुपियाँ, बिक्री दर 22.76 रुपियाँ। सऊदी अरबियन रियाल एक को खरीदर 40.58 रुपियाँ, बिक्री दर 40.74 रुपियाँ। कतारी रियाल एक को खरीदर 41.80 रुपियाँ, सऊदी अरबियन रियाल एक को खरीदर 40.58 रुपियाँ, बिक्री दर 40.74 रुपियाँ। कतारी रियाल एक को खरीदर 41.80 रुपियाँ, बिक्री दर 41.96 रुपियाँ। थाई भाट एक को खरीदर 4.65 रुपियाँ, बिक्री दर 4.67 रुपियाँ। यूएई दिराम एक को खरीदर 41.48 रुपियाँ, बिक्री दर 41.65 रुपियाँ। मलेसियन रिंगिट एक को खरीदर 37.84 रुपियाँ, बिक्री दर 37.79 रुपियाँ। साउथ कोरियन वन 100 को खरीदर 11 रुपियाँ, बिक्री दर 11.04 रुपियाँ। स्वीडिश कर्नर एक को खरीदर 16.06 रुपियाँ, बिक्री दर 16.12 रुपियाँ। डेनिस क्रोनर एक को खरीदर 23.78 रुपियाँ, बिक्री दर 23.86 रुपियाँ। हङकङ डलर एक को खरिदर 19.44 रुपियाँ, बिक्री दर 19.51 रुपियाँ। कुवेती दिनार एक को खरिदर 496.56 रुपियाँ, बिक्री दर 498.52 रुपियाँ। बराइन दिनार एक को खरिदर 404.16 रुपियाँ, बिक्री दर 405.75 रुपियाँ। अन्तिममा ओमानी रियाल एक को खरिदर 395.78 रुपियाँ, बिक्री दर 397.34 रुपियाँ। सुन्नुभयो आजको नेपाल राष्ट्रिय बैंकले तोकेको खुल्ला बजार वैदेशिक विनिमय दर। लागो अर्को गीत सुन्नतर्फ, अहिलेको लागि भने तिमी पारी मवारी रुकमान लिम्बुको आवाजमा एन्जॉय द सङ।